0: Indeed, we have sent you with the truth as a bringer of good tidings and a warner. And there was no nation but that there had passed within it a warner.
1: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
3: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग
2: डेजर्ट सफारी
3: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम
2: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे
3: तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
4: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Alif.

0: तारिक हलाल ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ऑन tarikhalal.com और घर बैठे ताज़ा मीठा हासिल कीजिए।
1: This is Laika Radio.

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
1: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
2: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
1: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया,
2: दिल तो टूट पे किया,
1: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
3: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
1: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर, अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394.
0: 7 stations, 1 podcast, 1

0: Listen to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s. This is Laika Radio, Greater Manchester. Advertise here now. Call 0161 250 822 or email sales@laikaradio.com.
1: Hi, मैं हूँ रुबीना खान. सुनिए मुझे लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में दोपहर 1 से 4 बजे तक द मैगजीन शो में.

0: Lots of correct answers. So let's go to some of your answers that have been coming through today. And I got these messages. First of all, Gargi, morning.
1: Hi, Raj. Today's Ghana is... तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए कमजोर हो जाता हूँ मैं तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए आवारा बन जाता हूँ
0: गार्गी वाव सो इम्प्रेसिव Barbara, thanks very much for your message as well.
2: तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए कमजोर हो जाता हूँ मैं.
0: You know what? Not a bad effort. I like that, Barbara. And Jawad, who's a regular. Jawad, over to you.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: Yeah, the currency rate aaj US dollar 1.33. इंडियन रुपीज में 128.76 रुपए, जबकि पाकिस्तानी रुपीज में 375.16 रुपए, बांग्लादेशी टका 166.20 पैसे, श्रीलंकन रुपीज 447.45 रुपए और अफगानी रुपीज 86.96 रुपए का।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. Formerly known as Asian Sound Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: हाँ जी, Southall वालों का पैगाम दुबई जाने के लिए बेहतरीन बनाया है और बहुत सारी ऑफर्स दी हैं इन्होंने और कहते हैं कि एटोल प्रोटेक्टेड है, आप इन्हें अभी कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर है 02085748410, इन्हें अभी कॉल कीजिए।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Leica Radio News Update.
2: और अब मिड मॉर्निंग शो में उर्दू की खास खास हेडलाइंस के बाद, जापान में 7.1 शिद्दत के ताकतवर जलजले से हलाकतों की तादाद 35 हो गई। अमेरिका के एक स्कूल में फायरिंग से 4 अफराद को कत्ल करने वाले लड़के के वालिद को 15 साल कैद की सजा। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल के इंतखाब के लिए पहली खुफिया वोटिंग मुनक्किद। अमेरिका में मुलाजमत के लिए गैर मुल्की तलबा से $1,00,000 फीस लेने की तजवीज। और ट्रंप ईरान जंग पर मुशीरों के दरमियान इख्तलाफात परेशान कुन। ईरान का कुवैत से अमरीकी फजाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा। पोलैंड में रूसी मिसाइल धमाके के बाद नेटो के जंगी तैयारे अलर्ट। लबनान के जनूबी इलाके में जोरदार धमाके। इसराइल ने जिम्मेदारियां पूरी न की तो अमन मुआहदे पर अमल नहीं होगा, हमास ने कह दिया। इराकची ने मिस्र की बंदरगाह पर हमला इसराइल का फालिज फेक ऑपरेशन करार दे दिया है। और ईरान ने उर्दन में अमरीकी तैयारों के एंकर्स की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तो ये तो थी उर्दू की चम खास खास हेडलाइंस। मजीद अपडेट जानने के लिए सुनते रहिए लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
2: और अब सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में 1 ग्राम गोल्ड की कीमत आज हो गई जनाब 98 पाउंड 18 पेंस, 98 पाउंड 18 पेनिया, पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट। 1 ग्राम गोल्ड की कीमत आज हो गई 36,800 रुपए, 36,800 रुपीज।
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Leica Radio.
2: प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आज की पहली लाइव रीड। जी हाँ जी, आज जुमा है और कल हफ्ता है और कल पहली तारीख है, आज 31 जुलाई है। आपको बता दें कि कल हमारी आपकी मुलाकात हो सकती है कहाँ भला, मैनचेस्टर टाउन सेंटर में, आनल सेंटर में। लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर विल बी ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ SKVP वड़ा पाव। वड़ा पाव एट हलाल प्लेस मैनचेस्टर आर्नल्ड सेंटर, जहां का पोस्ट कोड है M43AB, वहां पे आपकी मुलाकात हो सकती है, यकीनी तौर पर होगी। मेरे साथ इब्न ताबिश और मेरे साथ होंगी रबीना खान, हम दोनों से आप मुलाकात करेंगे। और कौन कौन आ रहा है जरा बताइएगा मुझे। दोपहर 12 बजे से ये सिलसिला शुरू होगा कल सैटरडे 1st अगस्त। SKVP वड़ा पाव इज वन ऑफ UK's फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन स्ट्रीट फूड ब्रांड।
1: ये है लाइका रेडियो।
3: लाइका रेडियो। This Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code LEICA10. WhatsApp 07482511603. Visit monosmarkets.com/tickets now.
4: You know that clean, fresh feeling after brushing? Sidayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Sidayu, Ayurved that fits your life.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साफो ट्रेवल
8: At all protected.
9: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
10: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
9: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Advertise your service here. 0161 250 8222. Leica Radio, Greater Manchester.
11: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
1: Ibanet Tabish on the Mid-Morning Show.

0: बात तो सही है साहब, कम से कम जुमे के जुमे इंसान को एक मुलाकात मिलना, एक मर्तबा मिलना, विश करना, मुबारकबाद देना जरूरी होता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK brand.
0: SBI वालों का पैगाम है, इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाने के लिए आज जुमे का दिन है, वीकेंड है, भेज दें पैसे। बहुत अच्छा रेट दे रहे हैं, आज का रेट है 127.05। यूनो SBI वालों का पैगाम, इनकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं यूके भर में, इनकी किसी ब्रांच में जाके आप रकम पहुंचा सकते हैं या फिर ऑनलाइन या फिर इनकी मोबाइल ऐप के जरिए। यूनो SBI मोबाइल ऐप यूके।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Formerly known as Asian Sound Radio, this is Leica Radio, Greater Manchester.
0: Leica Radio, Greater Manchester. Good morning, happy Friday and Jumma Mubarak aap sabko. हफ्ते के काम के आगाज का आखिरी दिन होता है, जो लोग मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं उनका आखिरी दिन, और मेरी तरह वीकेंड पे मजे करते हैं। आज जुलाई महीने की आज ही 31 तारीख होगी साहब, जुलाई का महीना भी तमाम हुआ, खत्म हुआ, कल से अगस्त का महीना शुरू। जी हाँ, कल अगस्त का महीना है, अगस्त का महीना मेरा महीना, मेरे मुल्क का महीना, तमाम पाकिस्तानियों का महीना, तमाम हिंदुस्तानियों का महीना। और आज की पहली, आज की रिडल आपसे बूझने से पहले पहले प्रोग्राम की इब्तदाइया शुरुआत करते हैं रब जलील के बाबरकत नाम से, जो मेरे और आपके दिलों के बेहद खूब जानता है। घर पे हैं, काम पे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और मेरा साथ निभाएंगे आवाज, और पूरे दोपहर के 1 बजे तक

0: आज की पहेली, बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो चलती है कभी तेज कभी आहिस्ता, मगर उसके पांव नहीं होते।
1: On Leica Radio, Greater Manchester.
0: अदाकारा मुमताज और रफी साहब,

0: लाइक रेडियो,
1: लाइक रेडियो। ये जादू चढ़ गया है साहब, ये जुमे का जादू है। ये वो जादू है जो मंडे से चढ़ता है और कहीं जुमे को जाके उतरता है। रोशडेल में आसिया जी ने हमसे एक बात पूछी, कहती हैं ताविश मैंने नोट किया है बहुत सालों से तुम्हें सुन रही हूँ, लेकिन अब कोई तकरीबन तुम्हारे फॉर्मेट में है, तुम मंडे से लेके फ्राइडे तक जब शो करते हो तो जुमे को बहुत झूम के और बहुत अच्छे सॉन्ग लगाते हो। सही लगा है आपको। एक बात पूछूं, मैं नहीं पूछ रहा, किसी ने मुझे लिख के भेजा है सुबह का आज का पहला मैसेज है साहब, पहला रोमांटिक मैसेज। एक बात पूछूं, जिस शख्स को हम भूल नहीं पाते, जिस शख्स को हम भूल नहीं पाते, क्या वो शख्स भी कभी हमें याद करता होगा? जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन ये मेरा आज का रिडल नहीं है, रिडल कुछ और है साहब। रिडल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो चलती है कभी धीरे कभी तेज, कभी बहुत फास्ट कभी कैंची की तरह, लेकिन उसके पांव नहीं है साहब। अच्छा जी, अब अगला क्लासिक गीत होगा हमारे प्रोग्राम का, ये लास्ट ट्रैक होगा रफी साहब का। रफी साहब के बारे में क्या कहें साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात, ऐसा जादू चढ़ा उनका भी कि आज तक नहीं उतरा। कजूरी जी ने बहुत प्यारे प्यारे शब्द और अल्फाज लिखे हैं उनकी शान में। आज ही कहते 31 जुलाई को रफी साहब हमें छोड़ गए थे।
0: I like a radio classic. Plays now.
2: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो
1: या कोई और इरादा है?

0: And so are the summer hits on Leica Radio, Greater Manchester.
1: ओ प्रिया, जब जब तू मेरे सामने आती है, मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। तू मेरा प्यार, मेरी पूजा, मेरी जिंदगी है। आ देख, देख तू मेरा पागलपन, कि मैं हर चेहरे में तेरा चेहरा तलाश करता हूँ। ये मुझे क्या हो गया है, क्या कहूँ, बस तुझे छूने को दिल करे, तुझे पाने को दिल करे।

0: Biker Radio.
1: राइट जनाब, जो बात दिल छुपाने की करे वो बात कहने को दिल चाह जाए, ये मैं नहीं कह रहा, ये सोनू निगम कह रहे थे। उम्मीद है कि आप फेरे से होंगे, घर पे हैं, काम पे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। आप सबको एक बार फिर से दिल की गहराइयों से जुमा मुबारक एंड वेलकम टू लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर। सुबह के 11 बजकर हमारे यहाँ 14 मिनट हो गए बरतानिया का मयारी वक्त, जुमे का वक्त, जुमे के दिन का सुबह का वक्त। पाकिस्तान में हो गए 3 बजकर 11 मिनट और भारत में हो गए 3 बजकर तकरीबन कह सकते हैं आप 31 मिनट। यस, शुक्रिया अदा करेंगे उन तमाम साथियों का जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमें हमारे आज के रिडल का जवाब दिया है। और रिडल हमने पूछा था कि जनाब वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जो चलती है कभी धीरे कभी तेज लेकिन उसके पांव नहीं। ये आज का हमारा रिडल था। मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें जवाब दिया। डॉक्टर अल्ताफ अलवी ने ज्वाइन किया है और तमाम सुनने वालों को सबको कहा है कि डॉक्टर साहब की तरफ से जुमा मुबारक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खैर मकदम आपका। और लम में हमारे साथी जी आसिम है, बिल्कीज बहन है, तायरा जी है और शिराज भाई हैं, ड्राइव कर रहे हैं। यास्मीन आसिफ ने हमें जुमा मुबारक का मैसेज भेजा है, बाकी सभी ने भेजा है। पीएसपी सज्जाद पहलवान और आसिफ जावेद लाहौर में, ताबीर हमारे साथ हैं, रिडल का जवाब दे रही हैं। हमीदा नाज आज हमें सुन रही हैं, हमीदा जी लंदन में, हमीदा जी वेलकम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आसिया हमारे साथ हैं जी, गजाला जी भी हैं, रुखसाना अफजल हैं रॉजडेल में, अतीका जी का फूलों का गुलदस्ता और रिडल का जवाब, बाकी बातें होंगी बाद में।
2: ये है लाइक रेडियो। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय धुरंधर।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: From cuddles to intensive care, from school runs to sirens. For babies, young children and teens, illnesses like measles, meningitis and pneumonia can cause serious life-threatening complications and even be deadly. Making sure that your child is vaccinated is a safe and effective way to keep them happy and healthy. Keep them protected with the NHS vaccines offered to children. Search NHS GM Child Vax or contact your GP practice.
5: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist.
6: Touring to St George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August.
5: Click RifkoTheatre.com for more info and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, panto fun for all the family.
7: Radio partner Laika Radio.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Chai break go ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
11: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
10: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
11: Rich, authentic taste every single time.
10: Royal Chai, brewed for business.
11: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
12: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
13: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
12: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
0: Bradford City Mela with Leica Radio Network. This weekend at City Park and Centenary Square, Bradford. Free entry.
14: Hi, this is Saleem.
15: Hi, this is Saleem.
14: Hi, this is Suleiman.
15: Hi, this is Suleiman.
14: From Saleem Suleiman. Keep listening to
16: Leica Radio.
0: A Leica Radio Classic plays now.
15: सुनो
16: कहो
15: कहा
16: सुना
15: कुछ हुआ क्या
16: अभी तो नहीं

0: is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: हाँ जी, करेंसी के रेट एक बार फिर आपको बता देते हैं. हमारे यहाँ यूके में आज यूएस डॉलर की कीमत 1.33 हो गई, 1.33 इंडियन रुपीज में 128.76, पाकिस्तानी रुपीज में 375.16, बांग्लादेशी टका 166.20, श्रीलंकन रुपीज 447.45 और अफगानी रुपीज 86.96 का.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio.
1: जी हाँ जी, टीज एंड सीज अप्लाई. लेकिन मेरी कोई शरारत नहीं होती, मैं बिना शर्तों के आपके लिए प्रोग्राम पेश करता हूँ. उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे. जुमे का दिन है, मुबारकबाद है, किसी की पैदाइश है तो किसी का बरसी का दिन है. देखिए, ये जिंदगी है और जिंदगी में आना जाना लगा रहता है. जब जिंदगी में, दुनिया में एक नई जिंदगी आती है तो हम खुशियां मनाते हैं, और जब उसी जिंदगी को वापस लौटाने का, उस अमानत को वापस लौटाने का वक्त आता है तो हम दुखी हो जाते हैं. एक इतला है, जुमे का दिन है आज. हमारे बड़े मोहतरम हमारे लिसनर हैं, हमारे चहेते डॉक्टर अल्ताफ अलवी. उन्होंने अभी हमें मैसेज किया सबको जुमा मुबारक की बात देने के साथ साथ. कहने लगे, भाई ताबिश मेरी खालाजान का, उनकी वालिदा की बहन थी बड़ी, उनका इंतकाल हुआ है कराची में और उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी बाद नमाज जुमा, तो लिहाजा आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त की है. डॉक्टर साहब, हम आपके इस गम में बराबर के शरीक हैं. अल्लाह पाक आपकी खालाजान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन.
0: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: जी हाँ, अब सोने का भाव. हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत हो गई 98.18 pounds पर ग्राम, जबकि पाकिस्तानी रुपीज में 24 के रेट 1 ग्राम गोल्ड का आज रेट है 36,800 rupees, 36,800 rupees पाकिस्तानी.
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
3: ये है Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: जुमे की सुबह, फ्राइडे मॉर्निंग, और वक्त हो गया हमारे यहाँ बरतानिया का म्यारी वक्त 11:25. ये पैगाम एनएचएस की जानिब से पेंडल कम्युनिटी रेडियो के तमाम सामेन के लिए है. बचपन में लगाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बीमारियों से बेहतरीन तहफ़ फराहम करती हैं, और इंग्लैंड में हर साल 5,000 से ज्यादा जाने बचाने में मददगार साबित होती हैं. बचपन की मुतअद्दिद संगीन बीमारियां अस्पताल में दाखिले और बाज़ूक़ात जिंदगी भर की माजूरी का सबब बन सकती हैं. खसरा और काली खांसी जैसी बीमारियां हमारी कम्युनिटी में बहुत तेजी से फैलती हैं. अगर आपके बच्चे ने हिफाजती टीके नहीं लगवाए तो वो इन बीमारियों से यकीनी तौर पर महफूज नहीं हैं. एनएचएस की जानिब से फराहम की जाने वाली बचपन की तमाम वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को लगाई जा चुकी हैं, और रिकॉर्ड से वाजे है कि इन वैक्सीन से बच्चे बहुत सी बीमारियों से बिल्कुल महफूज हो जाते हैं. बेहतरीन तहफ़ के लिए जरूरी है कि वैक्सीन मुकर्रर वक्त पर लगवाई जाए. अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो जल्द अज जल्द अपने जीपी से राबता करें ताकि वो वैक्सीन मुकम्मल की जा सके. क्या आपके बच्चे की तमाम हिफाजती वैक्सीन बर वक्त मुकम्मल हैं? ये जानने के लिए अपने बच्चे की रेड बुक चेक करें या अपने जीपी या सर्जरी से राबता करें. मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk चाइल्डहुड वैक्सीनेशन.
0: Ibanez Habish on Leica Radio, Greater Manchester.
2: Leica Radio.
0: एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट.
1: राइट जनाब, लाइका रेडियो पे जाके हमारे लाइका एक्स्ट्रा को देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां देखें हर हफ्ते एक नए मौजू पे हमारे पॉडकास्ट का एक जो है एपिसोड आता है. और आज दीप राजा और खुश ये दोनों मिलके जो है होस्ट कर रहे हैं इस एपिसोड को, इस हमारे पॉडकास्ट को, और टाइटल है जी हॉनर बेस अब्यूज.
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. दिस इज लाइका रेडियो.
2: Travel 7.
4: Carful Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Royale Festival CIC presents,
8: in association with Leica Radio, Greater Manchester,
7: Radford City Mela 2026.
8: Sponsored by the University of Huddersfield and Avant Water.
7: This summer, Bradford comes alive with music, culture, food and full family entertainment at City Park and Centenary Square, bringing a Mela back after 13 years.
8: Catch live performances from Origin, Sahara, First Man, Mumsy Stranger, Saloni, DJ Psyker and many more artists to be announced.
7: Free entry for everyone on the 1st and 2nd of August 2026.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
8: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
9: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
8: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
9: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
11: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.

0: at the Golgapian da Pani.
1: All Monster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
3: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0161-250-8222 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
4: Making summer feel better on the Laika Radio Network.

0: Striker Radio.
1: बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, अपने जमाने का सुपर डुपर हिट गीत। रफी साहब की क्या बात है साहब, क्या बात है। बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी। एक बात बताऊं आपको, बड़ी काम की बात है, गौर से सुनिएगा। आप और हम कभी कभी अक्सर एक बात कहते हैं, किसी दौलतमंद साहिब सरवत इंसान को, किसी मशहूर इंसान को, किसी शोहरत याफ्ता शख्सियत को कहते हैं यार बड़ा आदमी है भाई। लेकिन मेरे उस्ताद ने कुछ और कहा था। देखिए, पैसे वाला आदमी बड़ा आदमी नहीं होता, और खाली शोहरत का भूखा शोहरत याफ्ता वो भी बड़ा आदमी नहीं होता। बड़ा आदमी दिल से होता है, शख्सियत से होता है, अपनी नरम मिजाजी से होता है, अपनी रहम दिली से होता है। और बॉलीवुड की इतनी बड़ी इंडस्ट्री में बहुत बड़े दिल के मालिक, गरीब परवर और बड़े रहीम, रहम करने वाले, न जाने कितने फिल्मों में गाने से उन्होंने, मतलब गाने के लिए रकम नहीं ली, मुआवजा नहीं लिया, और अपने से छोटे जूनियर गुलकारों को आने का आगे मौका दिया। इतना बड़ा दिल अपनी जगह पे कौन खड़े होने देता है किसी को साहब। रफी साहब के गाने, मेरा ख्याल है अगर आज मैं क्या अपने पूरे 3 घंटे के शो में लगाऊं, अगर सारे दिन लाके रेडियो पे उनके सॉन्ग लगे तो दिन खत्म हो जाएगा, रफी साहब के गाने खत्म ना होंगे।
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: एक बार दोबारा फिर से SBI वालों को पैगाम, इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाने के लिए आज का रेट दे रहे हैं 127.05 रुपए। ऑनलाइन या इनकी किसी ब्रांच में जाएं या इनके मोबाइल ऐप के जरिए योनो SBI मोबाइल ऐप UK के जरिए।
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Like a radio.
1: वो कौन सी चीज है जो धीरे धीरे, कभी तेज, कभी चीखती है, कभी चिल्लाती है, लेकिन बोलती है। मतलब चलना उसका काम है साहब, जहन पे जोर दीजिएगा, चलना काम है उसका, लेकिन उसके पांव नहीं है। ये आज का हमारा रिडल है साहब। शुक्रिया जी आसिफ जावेद, बोल्टन में आपने हमें ज्वाइन किया है, आप हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और गजाला जबी, फरजाना नसीब और खुशबू आसिम, और लाहौर में ताबीर, कराची में फरीद हुसैन भाई और अफशा, हमारी जापानी गुड़िया और शमा जी, आप सब ने हमें धीरे धीरे मुख्तलिफ जवाब दिए हैं हमारे रिडल के। किसी ने लिखा है कि जी हवा, अब वो भी चलती है और पानी भी चलता है, और किसी ने कहा जी नदी, नदियाँ वो भी चलती है, कभी धीरे कभी तेज, किसी ने कहा सूरज, किसी ने कहा चांद, किसी ने कहा धड़कन, किसी ने कहा सांसें।
0: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
1: हाँ जी, सांसें। और अब पाकिस्तानी क्लासिक सॉन्ग में हम शामिल करेंगे आवाज, बिल्कुल नया गीत है, इससे पहले नशर नहीं हुआ, जुनेद जमशेद की आवाज का ये गीत हमें लेके जाएगा अगली ब्रेक की जानेब।

0: to Trafford. This is Leica Radio, Greater Manchester. Leica Radio.
1: जी हाँ जी, लता मंगेशकर और अदाकारा मुमताज पर फिल्माया गया गीत. फिल्म का नाम था दो रास्ते. 1969. 56 बरस हो गए. 56-57 बरस पुराने गाने आज भी आप और हम ऐसे सुनते हैं जैसे कोई नई बात ही नहीं, जैसे कोई पुरानी बात नहीं. गाने, म्यूजिक, शायरी, ये कभी पुरानी नहीं होती. आज के हमारे तमाम गीत होंगे जी कजूरी जी के नाम. उन्होंने कहा है, आज मैं आपकी खामोश लिस्नर हूं ताविश, कोई काम नहीं करूंगी. शमीम बानो बेगानी, आपका शुक्रिया. आपके नाम भी होंगे सारे गीत. अशरफ भाई आथरटन में, आपके नाम भी होंगे सारे रफी साहब के गाने. दिया हमें सुन रही है नेल्सन में, दिया वेलकम. रॉबिन भाई पहुंच गए हैं फ्लोरिडा में, और गुलाम अली भाई हमें सुन रहे हैं बरोको. और चंदा हमें सुन रही हैं जी बरी में. बरी में हमारे साथ होते हैं रोजाना अमन और लीला. अब्रार भाई आपका शुक्रिया, आपने भी बहुत देर पहले मैसेज किया था. खालिद लंगड़ियाल भाई, उमर भाई, अरशद मुगल, बिस्मा, खालिद महमूद नेल्सन में, वहीद इकबाल भाई, मोइना जी, जुमा मुबारक का मैसेज, रिडल का जवाब साथ साथ, सायरा जी, ताहिर जावेद हमारे साथ नेदरलैंड, लेस्बन में होंगे हमारे साथ भट्टी साहब, नसीर भट्टी, हमजा हमारे साथ है, हमजा वालेकुम सलाम, जुमा मुबारक आपको, अहमद गेटली में, राजा अतीक साहब, काशिफ हमारे साथ होते हैं जी आस्टन इन द लाइन में, जाहिद अब्बास, खुशबूर शकील भाई प्रेस्टन में.
0: थ्री बिग स्टेशंस, वन लार्ज नेटवर्क, वी आर लाइका रेडियो इन लंदन एंड नाउ इन ग्रेटर मैनचेस्टर. Punjabi hit of the hour with Tabish.
1: जी हाँ जी, मैडम नूरजहां का वो गाना जो बस क्या कहूँ, लब खामोश हैं और ये गीत हमें लेके जाएगा 12 बजे की खबरों की जानिब.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: हाँ जी, करेंसी के रेट एक बार फिर से आपको बता दें, US डॉलर 1.33, इंडियन रुपीज में 128.76, पाकिस्तानी रुपीज में 375.16, बांग्लादेशी टका 166.20, श्रीलंकन रुपीज 447.48 और अफगानी रुपीज 86.96.
2: Like Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio.
2: Leica Radio.
0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: Southall वाले लेके जा रहे हैं आपको जी दुबई. वैसे कहीं किसी भी दुनिया की किसी भी आप कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन दुबई के लिए खास ऑफर्स मौजूद हैं. कहते हैं कि एटॉल प्रोटेक्टेड है और नंबर इनका है 0208-574-8410.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: और गोल्ड का रेट हमारे यहाँ सोने का भाव आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 98 pounds 18 pence 98 pounds 18 pence पर ग्राम. पाकिस्तानी रुपीस में पर ग्राम यानी 1 gram 24 carat सोने का भाव आज है 36,800 rupees 36,800 rupees पाकिस्तानी.
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
0: Leica Radio.
1: बरतानिया का बयारी वक्त जुमे की दोपहर और दोपहर के हो गए 12:23. ये पैगाम NHS की जानिब से पेंडल कम्युनिटी रेडियो के तमाम सामेन के लिए है. बचपन में लगाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बीमारियों से बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं. और इंग्लैंड में हर साल 5,000 से ज्यादा जाने बचाने में मददगार साबित होती हैं. बचपन की मुतादित संगीन बीमारियां अस्पताल में दाखिले और बाजुखा जिंदगी भर की माजूरी का सबब बन सकती हैं. खसरा और काली खांसी जैसी बीमारियां हमारी कम्युनिटी में बहुत तेजी से फैलती हैं. अगर आपके बच्चे ने हिफाजती टीके नहीं लगवाए तो वो इन बीमारियों से यकीनी तौर पर महफूज नहीं है. NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली बचपन की तमाम वैक्सीन्स दुनिया भर में लाखों बच्चों को लगाई जा चुकी हैं और रिकॉर्ड से वाजह है कि इन वैक्सीन से बच्चे बहुत सी बीमारियों से बिल्कुल महफूज हो जाते हैं. बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए जरूरी है कि वैक्सीन मुकर्रर वक्त पर लगवाई जाए. अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो जल्द अज जल्द अपने GP से राबता करें ताकि वो वैक्सीन मुकम्मल की जा सकें. क्या आपके बच्चे की तमाम हिफाजती वैक्सीन्स बरवक्त मुकम्मल हैं? ये जानने के लिए अपने बच्चे की रेड बुक चेक करें या अपने GP सर्जरी से राबता करें. मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccination.
3: ये है
2: Leica Radio.
4: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान. देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410. दैट्स 0208-574-8410.
5: साउथहॉल ट्रेवल. At all protected.
6: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code LEICA10. WhatsApp 07482-511-603. Visit monosmarkets.com/tickets now.
3: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th, आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
7: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
8: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
7: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
9: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
10: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Download the Like a Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
11: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: Right, janab, India apne pyaron ko rakam pahunchane ke liye online ya inki kis branch mein jaake aap rakam pahuncha sakte hain ya inki mobile app ke zariye. Aaj ka rate 127 rupees 6 paise hai.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. We are Leica Radio.
3: Leica Radio.
1: Greater Manchester. Leica Radio.
2: Leica Radio, Greater Manchester. Good afternoon. Program ke tisre hisse ka aadha hissa. Bamushkil aadha hissa baaki reh gaya. और अब आपसे विदा होने का वक्त है और मेरे बाद यहाँ पे आएंगी नुजहत बाजी. नुजहत महबूब साहिबा आपके लिए जुमे का स्पेशल प्रोग्राम पेश करती हैं, रूहानी प्रोग्राम पेश करती हैं. पूरे चार बजे तक आप उनका साथ निभाइएगा जरूर. मैं जा नहीं रहा, मैं अभी मौजूद हूँ. 25 मिनट हैं मेरे पास अभी बाकी. कुछ और गीत प्रोग्राम में शामिल करेंगे रफी साहब के, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं. और अदाकारा मुमताज, बस आपका शुक्रिया अदा कर दें, जरा आप लोगों के नाम ले लें, कहीं आप बेचैन ना हो कि अभी तक हमारा नाम नहीं लिया था अविश भाई ने. पहली जी हाँ, आज का रिडल हमने बस इतना से पूछा था आपसे कि भाई इतना बता दीजिए कि वो कौन सी चीज है जो चलती फिरती है. नहीं फिरती नहीं है, फिरती के लिए तो फिर पाँव जो है वो आ जाएंगे. एक चीज है जो चलती है भाई, लेकिन उसके पाँव नहीं है भैया. इसके जवाब बहुत सारे हैं भाई, मुझे अंदाजा नहीं था कि इस रिडल के, इस पहेली के इतने सारे जवाब होंगे. बुद्धू समन मेरा. ताविश बड़ा अपने आप को स्मार्ट समझता है. ताहिर जावेद भाई आपका बहुत शुक्रिया. सौदागर भाई हमारे साथ है जी, रोशजेल में होते हैं लेकिन पाकिस्तान गए हुए हैं. गजाला जबी अदनान, अदनान पाकिस्तान में है. यासिर मुदस्सिर सज्जाद भाई, अरशद मुगल भाई, एम खान, बड़े हरदल अजीज हमारे दोस्त हैं एम खान, सज्जाद पहलवान भाई हमारे साथ होते हैं, शुमायला नवीद होती हैं, उमर फारूक, शफकत अली मजर भाई लीड्स में, और मोहम्मद रफी साहब का वो गीत जो

0: मुरली साहब का इंतकाल हो गया 1980 31 जुलाई। बहरहाल जी, अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे और अदाकारा मुमताज को हयात ही दे, वो जीती रहें। आज भी जाज़िब नजर हैं, बरतानिया में रहती हैं। कहते हैं कभी खुद गर्जी पर, या यूं कहें कि कभी खुद पर हंसी आती है कभी आंखें भर जाती हैं। कभी खुद पर हंसी आती है और कभी आंखें भर जाती हैं, मगर क्या करूं कि कुछ लोग आदत नहीं होते। अरे वाह, कुछ लोग आदत नहीं होते, वो रूह का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, वो रूह से बात करने के लिए सामने होना जरूरी नहीं होता। रूह से बात करने के लिए उसका सामने होना जरूरी नहीं होता। मेरी दीवानगी का आलम यह है कि मैं आज भी उससे वैसे ही मुखातिब हूं जैसे वो सुन रहा हो, क्योंकि मान लो कि वो नहीं है तो शायद मैं भी नहीं हूं। और कहते हैं कि सताकर मुझे बेबस करती हैं, तेरी यादें भी हद करती हैं। आय आय आय, बहुत शुक्रिया राहिला जी, गुड आफ्टरनून। बाबू परवेज भाई हमें सुन रहे हैं, अयूबी भाई का जुमा मुबारक का मैसेज है जी सबके लिए। और अब एक और ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तानी क्लासिक सॉन्ग, उसे भी तो शामिल करना है।
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

पाकिस्तान में आपको लेके चलते हैं 80s के जमाने में. मेहदी हसन की आवाज, दुनिया से तुझको चुरा लूं, सताकर मुझे बेबस करती हैं, सताकर मुझे बेबस करती हैं, तेरी यादें भी हद करती हैं.

0: रखना,
1: जाओ कहीं भी बस हमें याद रखना, दुआओं में याद रखना। उम्मीद करता हूँ कि आज के हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट रफी साहब की यादें, उनके गीत और अदाकारा मुमताज के गीत। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है, वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके, लिहाजा इस वक्त की कदर कीजिए। मेहरबानों, कदरदानों, तमाम लिस्टर का बेहद शुक्रिया। आई लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल वीकेंड। जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें अपने खर्चे पे। आज की रिडल का जवाब था साहब, जो जवाब मेरे पास लिखा हुआ था कि जो चीज, वो कौन सी चीज है जो बहुत चलती है, बहुत चलती है मगर उसके पांव नहीं है, और वो है ताबिश की जुबान। कैंची की तरह चलती है। चलिए इजाजत चाहते हैं आपसे, बस थोड़ी सी देर में यहाँ नुज़रत महबूब साहिबा हमारी बहन आ रही, उनका आप साथ निभाएंगे और मेरी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अल्लाह की रजा से जिंदगी बखैर, तो मंडे मॉर्निंग सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, जुमा मुबारक, खुदा पामान।
2: Internet Tabish, rolling out your favorite hits across the Northwest. This is Leica Radio, Greater Manchester.

0: at the Golgapiada Pani.
1: All Monster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Bradford City Mela with Leica Radio Network. This weekend at City Park and Centenary Square, Bradford. Free entry.
3: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
4: Okay, help's on its way.
5: Grab my hand!
3: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
6: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
7: अपने कारोबार को अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर पहुंचाना चाहते हैं तो इसे लाइक रेडियो मैनचेस्टर पर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर ईमेल sales@laikamedia.co.uk और कॉल नंबर इज 0161250822 दैट इज 0161250822 लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर आपकी कम्युनिटी आपका स्टेशन
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
8: और आज की करेंसी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं कि क्या रेट है आज पाउंड का. यूएसए डॉलर आपको मिलेंगे एक पाउंड पर 1.33 डॉलर. इंडिया के मिलेंगे आपको जी हां 128.76 रुपीस. पाकिस्तान के मिलेंगे आपको 375.16 रुपीस एंड बांग्लादेशी टका आपको मिलेगा 166.20 एंड श्रीलंकन रुपीस आपको मिलेंगे 447.45 एंड अफगानी रुपीस मिलेंगे 86.96 रुपीस.
9: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio, Greater Manchester. Formerly known as Action Sound Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
8: और जी हाँ आज का गोल्ड रेट है पर ग्राम 97.4 पेंस.
2: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
10: Leica Radio.
2: This is Leica Radio.
9: Leica Radio.
2: Greater Manchester.

0: तारिक हलाल, क्वालिटी मीट आपके नजदीकी सेंसबरीज में दस्तयाब है। और अगर आप चाहें तो ocado.com या tarikhalal.com से ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं।
1: This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Greater Manchester.

और आज का दिन खुशियों, सेहत, कामयाबियों से भर दे, हर परेशानी दूर हो, हर ख्वाहिश पूरी, जायज ख्वाहिश पूरी हो और दिल सुकून से मामूर रहे। आज का ये बरकतों वाले दिन हर आने वाले दिन से बेहतर हो और खुशगवार साबित हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लम अला नबीना मोहम्मदिन व अला आले मोहम्मद।

0: ये है लाइका रेडियो।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, Nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Like a listeners get 10% off tickets and stalls with code LIKA10. WhatsApp 07482-511-603. Visit monosmarkets.com/tickets. Now.
6: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है। अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है। बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल है। NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें।
5: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
7: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
8: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
7: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
9: Caratino Better Ghee. The healthier, low price, cholesterol free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee. Available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
10: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
11: अपने अजीजों और रिश्तेदारों को रकम भिजवाना चाहते हैं इंडिया में तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। फौरी रकम भिजवाइए यूनो SBI UK की किसी भी करीबी ब्रांच के जरिए या फिर घर बैठे यूनो SBI मोबाइल ऐप के जरिए भी आप रकम भिजवा सकते हैं।
10: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest.
0: ये है लाइका रेडियो।
10: लाइका रेडियो नेटवर्क, नाउ द होम ऑफ लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर। फ्रॉम स्टॉकपोर्ट टू ओल्डहम, दिस इज लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।

और जी हाँ, जुम्मा मुबारक एक बार फिर आप सबको कहती हूँ। फ्राइडे स्पेशल आप सुन रहे हैं नुसरत महबूब के साथ, और अब शामिल करते हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आवाज में ये खूबसूरत कलाम। आप सबके नाम सैयद शुजात अली आपने याद किया और जुम्मा मुबारक का पैगाम भेजा आपने, तो बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बरकत और रहमतों वाला ये मुबारक दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपकी तमाम फैमिली को। तो बहुत शुक्रिया याद फरमाए के लिए। हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। आमीन सुम्मा आमीन।

0: The Northwest with Leica Radio Greater Manchester and the South with Leica Radio Greater London. We are your Leica Radio Network.
1: और जी हाँ, आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क की बेहतरीन नशिया। और इस वक्त जहाँ और जिस जगह भी साथ निभाया जा रहा है, साथ निभाने का बहुत शुक्रिया। वक्त मिला लीजिए, 2:10 हो चुके हैं और प्रोग्राम का ये सेकंड आवर है। और इसमें भी आप सुनते हैं कुछ हमदिया नातिया कलाम और साथ साथ आपके मैसेजेस, आपके पैगाम भी शामिल रहते हैं। फरजाना नसीब, आपकी तरफ से मैसेज आया था। नुसरत जी, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगी। आज फिर से आपको सुनकर बहुत खुशी हुई, तो बहुत शुक्रिया आपका। तो आपके लिए भी ढेरों दुआएं हैं, आपके चचा जान के लिए भी, उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। और एक हदीस लिखी है आपने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं है जो नोहा करते हुए अपने रुखसार पीटे, गरीबान फाड़ डाले और जाहिलियत की पुकार पुकारे। बिल्कुल अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है जो इस तरह अपने गम का इजहार करते हैं। दुख तकलीफ तो इंसान को जिंदगी में आते हैं, जब कोई अचानक किसी से बिछड़ जाए, कोई दुनिया से चला जाए या कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए, तो हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि वो खामखा पीटना शुरू कर देते हैं और बहुत जोर जोर से रोते हैं। तो ये अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये जाहिलियत के जमाने में इस तरह होता था। इस बात से अल्लाह ताला ने मना किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया फरजाना नसीब आपका। और रुखसाना अफजल, आपकी तरफ से मैसेज है, जुम्मा मुबारक है, गुड आफ्टरनून नुसरत जी। तो बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम, सलाम टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू बहुत बहुत। जुम्मा मुबारक, अल्लाह मुसल्ली वसल्लम मुबारक अला नबीना मोहम्मद या कना बदू हुआ या कनास्तान। ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हम इखलास के साथ अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारी परेशानियां दूर फरमा, हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमारे वालदैन अहले खाना और तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, सबकी मखबत फरमा और हमें दुनिया और आखिरत की हर भलाई अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो खूबसूरत दुआ आपने शामिल की, तो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो रुखसाना अफसर जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी इस जो बरकतों वाले दिल की बहुत बहुत मुबारक हो। तो साथ निभाने के लिए और याद फरमाई के लिए और आपकी दुआओं के लिए तहे दिल से ममनून हूँ। और इसी तरह याद किया तारे जी आपने, जो मुबारक मैसेज आपकी तरफ से भी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, क्या हाल आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरी तरफ से आपको और सब सुनने वालों को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने सामान में रखे और आपकी दुआओं के तलबगार हूँ। तो आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं तारा जी। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, जी हाँ, सलामत रखे, आमीन सुमामीन। और कुछ बातें आपने शेयर की हैं, दुरूद शरीफ अस्तगफिरुल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का इंतखाब आसमानों से होता है, अल्लाह फैसला करता है। ये इंसान मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ेगा। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों का इंतखाब अल्लाह ने किया अपने महबूब पर दुरूद पढ़ने के लिए। दुनिया में लाखों इंसान होते हैं इंसान के लिए, लेकिन कब्र का साथी कोई नहीं होता। कुर्बान जाओ दुरूद शरीफ पर, ये एक ऐसा दोस्त है कि दुनिया में भी दोस्ती निभाता है, कब्र में भी, पुरसरात में भी, हश्र में भी, जन्नत में, हर जगह दोस्ती निभाएगा। और दुरूद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। इस दौर में लाखों दुख हैं, लाखों परेशानियां, मसले हैं, मसाइल हैं, तमाम का جی ہاں، حل جو ہے وہ درود اور استغفر اللہ میں ہے. استغفار کا، استغفر اللہ میں وہ طاقت ہے جو بدبخت کو بھی خوشبخت کر دیتا ہے. درود کی کثرت کریں، لیکن ساتھ میں 1,100 بار لازمی استغفر اللہ پڑھیں اور اپنی زندگی میں جی ہاں جاری رکھیں. تو بہت شکریہ اس انفارمیشن کے لیے. تارا جی خوش رہیں. اور اپنے والدین کے بارے میں لکھا ہے کہ والدین کی خاموش محبت، والدین کی محبت کا نعم البدل کوئی نہیں. کبھی باپ کی آنکھوں میں چھپی پریشانی، تو کبھی ماں کے ماتھے پر پڑی فکر کی لکیریں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر لے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشوں کو ہماری ضرورتوں پر قربان کر دیتے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں کہ والدین کے بغیر زندگی ایک بے رنگ تصویر کی طرح ہے. اور قدر کریں ان کی جب تک وہ آپ کے پاس ہیں، کیونکہ یہ وہ سایہ ہے جو دنیا میں دوبارہ نہیں ملتا. اللہ پاک تمام والدین کا سایہ سلامت رکھے اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو بہت شکریہ جی ہاں طاہرہ جی آپ کا. یاسمین آصف آپ کی طرف سے میسج آیا، جمعہ مبارک. تو خیر مبارک، تو آپ بھی ساتھ نبھا رہی ہیں. اور آسیہ سلیم جی آپ کی طرف سے میسج آیا ہے، آپ بھی ساتھ نبھا رہی ہیں. وام ویلکم آپ نے کہا ہے، جمعے کی بہت بہت مبارکباد بھیجی ہے تمام لسنرز کو بھی. اور آپ نے کہا ہے بہتر آج بہت اچھا ہے، خوشگوار موسم ہے. کوئی بات نہیں، آپ نے کہا تھوڑی میں لیٹ ہو گئی ہوں میسج بھیجنے میں، تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ سن تو رہی ہیں نا. تو اللہ پاک ہمیشہ آپ کو خوش رکھے. آپ کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی، تو بہت ساری دعائیں ہیں آپ کی صحت و سلامتی کے لیے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. آمین سب آمین.
0: Leica Radio Network, now the home of Leica Radio Greater Manchester.
2: Ready for this.
3: Mega blockbuster Durando on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op Live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code LEICA10. WhatsApp 07482511603. Visit monosmarkets.com/tickets. Now.
9: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
10: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
9: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
10: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
9: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
11: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
12: यू मीन सफल ट्रेवल?
11: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
12: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल।
2: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
12: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
13: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
14: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: और जी हाँ, करेंसी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। आज का एक पॉइंट पर आपको जी हाँ कितने डॉलर मिलेंगे, कितने रुपीस मिलेंगे। तो पाकिस्तानी रुपीस आपको मिलेंगे 375.16 एंड इंडिया के मिलेंगे आपको 128.76 रुपीस और बांग्लादेश के मिलेंगे आपको 166.20 टका एंड श्रीलंका के मिलेंगे आपको जी हाँ 447.45 लंकन रुपीस एंड अफगानिस्तान के मिलेंगे आपको 86.96 अफगानी और डॉलर आपको मिलेंगे 1.33 डॉलर।
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rates and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is the LIKA Radio Network across London, Manchester and the Midlands. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
1: और जी हाँ, गोल्ड टुडेज गोल्ड रेट 24 कैरेट गोल्ड का पर ग्राम रेट है 97.09 पेंस।
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
15: Like a radio.
0: LIKA Radio, Greater Manchester, on 963 AM and 1377 AM.
1: और ये जरूरी पैगाम आप तक पहुंचा दें जी हाँ, वैक्सीनेशन के बारे में। Here's an important announcement for parents. Give your child the best possible start by making sure they are up to date with their childhood vaccinations. And vaccinations protect against serious illnesses like measles and whooping cough, which can spread easily in our communities. If your child isn't vaccinated, they are not protected. Childhood vaccination helped prevent more than 5,000 deaths every year in England. It may help to know that all childhood vaccines offered by the NHS have been safely given to millions of children around the world. So it's important that vaccines are given on time for the best protection. But if your child has missed a vaccine, you can still contact your GP to catch up. So are your child's vaccinations up to date? Check their red book or speak to their GP practice. For more information, visit nhs.uk/childhood vaccinations.
0: LIKA Radio.
16: From cuddles to intensive care, from school
0: Radio. Greater Manchester.

0: मैं खुश होके
1: Radio Network, now the home of Leica Radio Greater Manchester.
2: और ये नाचे लिखो आपने सुने ये गुलकार मोहम्मद रफी साहब की आवाज में. आपको पता है आज 31 जुलाई है और बरसा कईद के ये मशहूर मारूफ गुलकार इनकी आज बरसी है. 24 दिसंबर 1924 को पैदा हुए और 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया से रुखसत हुए. उन्होंने अपने चार दिहाइयों पर मुहित तवील कैरियर में हजारों यादगार नगमात गाए. और बेशुमार गजलें इसके अलावा नात हमदो नात इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने गीत भी इनकी आवाज में मशहूर हैं. तो चूंकि आज इनकी बरसी है मोहम्मद रफी साहब की तो गीत तो मैं प्ले नहीं कर सकती लेकिन कुछ यादगार नात हैं नात शरीफ हैं तो वो शामिल करती हूँ.

नुसरत भट्टी, आपकी तरफ से मैसेज आया है लेकिन आपने वॉइस मेल भेजा है तो वो मैं शामिल नहीं कर सकती। टेक्स्ट मैसेज भेजें तो वो शामिल हो जाएगा, तो बहुत शुक्रिया आपका।

0: तेरे मौसम खुल्द की खुशबू से जगाया जाऊं, हश्र के दिन में तेरे शहर में पाया जाऊं। जी हाँ, कलाम मोहसिन नकवी का और नातवां थे अब्दुलरहमान निसार। और ये शुक्रिया अदा किया है उज़्मा जी आपने, और आपने लिखा है कि मुझे यही इसी आवाज में सुनना था। ये बहुत पुराना ये कलाम है और आवाज भी बहुत खूबसूरत, और इसकी एक मिनट ठहरे। और जी हाँ, आवाज भी बहुत खूबसूरत थी और कलाम भी बहुत खूबसूरत मोहसिन नकवी का, और पसंद थी उज़्मा जी आपकी और खासतौर पर आपके नाम। और आपने शुक्रिया भी अदा किया है मिसेज भट्टी जी, आपकी तरफ से मैसेज आया, आप मैकल्सफील्ड में साथ निभा रही हैं। और आपका भी बहुत शुक्रिया साथ निभाने के लिए। तो इसी तरह सब साथ निभाते रहिए, आपके मैसेजेस आपके पैगाम हम तक पहुंच रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप के जरिए आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर है 07703403020।
1: खतरों के खिलाड़ी ऑन कलर्स टीवी, खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी।
2: खतरों के खिलाड़ी
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
4: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
3: डेजर्ट सफारी,
4: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
3: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
5: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
6: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting ditzy twist. Touring to St George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, panto fun for all the family.
7: Radio partner Leica Radio.
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Have you tried Mumbai's favorite street food? Meet the iconic SKVP Vada Pav, coming to Manchester. SKVP Vada Pav, one of the UK's fastest growing Indian street food brands, is opening its new store on 1st August at R1 Hale Place, Manchester, Arndale, M4 3AB. Join the Leica Radio Greater Manchester team for the grand opening and be among the first to taste the authentic flavors of Mumbai. SKVP Vada Pav, we'll see you there.
9: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.

0: Mamster Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Bradford City Mela with Leica Radio Network. This weekend at City Park and Centenary Square, Bradford. Free entry. News headlines up next. Leica Radio, Greater Manchester. Leica Radio, Greater Manchester. On 963 AM and 1377 AM.
3: मैं फकत खाक हूँ मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी, ये एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। और प्रोग्राम की ये खूबसूरत पेशकश खास तौर पर आसिया सलीम जी आपके नाम, रुखसान अफजल आपके नाम और तारा जी आपके नाम भी।
4: मुस्तफा के जैसा किसी का मकान,
3: और मिसेस बट्टी जी आपके नाम
4: है,
3: यास्मीन आसिफ आप भी साथ हैं, बारी आपके नाम, फरजाना नसीब आपके नाम।

0: Arfana Kalam with Nuzhat Mehboob every Friday between 1 to 4 p.m. on Laika Radio, Greater Manchester.
1: और जी हाँ, अरफाना कलाम आप सुन रहे हैं इस वक्त फ्राइडे स्पेशल इस लास्ट आवर में। ना वो वक्त रहा, ना वो शौक रहा, एक और सूफी कलाम खासतौर पर तारा जी आपके नाम, आपने इस कलाम के लिए फरमाइश की है। अगर आप भी कोई अरफाना सूफियाना कलाम सुनना चाहते हैं तो आप भी फरमाइश कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। व्हाट्सएप का नंबर है 07703403020।

0: और ये जरूरी पैगाम आप तक पहुंचा दें। और ये पैगाम उन NHS के जानिब से पेंडल कम्युनिटी रेडियो के तमाम सामेन के लिए है। बचपन में लगाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बीमारियों से बेहतरीन तहफ़ फराहम करती हैं और इंग्लैंड में हर साल 5,000 से ज्यादा जाने बचाने में मददगार साबित होती हैं। और बचपन की मुतअद्दी संगीन बीमारी अस्पताल में दाखिले और बाज़ों का जिंदगी भर की माजूरी का सबब बन सकती है। खसरा और काली खांसी जैसी बीमारियां हमारी कम्युनिटी में बहुत तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे ने हिफाजती टीके नहीं लगवाए तो वो इन बीमारियों से यकीनी तौर पर महफूज नहीं है। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली बचपन की तमाम वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को लगाई जा चुकी हैं और रिकॉर्ड से वाजह है कि इन वैक्सीन से बच्चे बहुत सी बीमारियों से बिल्कुल महफूज हो जाते हैं। और बेहतरीन तहफ़ के लिए ज़रूरी है कि वैक्सीन मुकर्रर वक्त पर लगवाई जाए। अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो जल्द अज जल्द अपने GP से रब्ता कायम करें ताकि वो वैक्सीन मुकम्मल की जा सके। क्या आपके बच्चे की तमाम हिफाजती वैक्सीन बर वक्त मुकम्मल है, ये जानने के लिए अपने बच्चे की रेड बुक चेक करें या अपनी GP सर्जरी से रब्ता करें। मजीद मालूम के लिए विजिट करें NHS.UK/childhood।
1: This is Leica Radio. Ace Piri Piri is turning up the heat in Bolton with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Ace Piri Piri. Definitely worth a visit. This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Greater Manchester.
3: Arfana Kalam.
4: Arfana Kalam.
1: With Nusrat Mahbub. Every Friday between 1 to 4 p.m. on Leica Radio, Greater Manchester.
0: और जी हाँ, इश्क हकीकी अशफाक अहमद इश्क हकीकी के बारे में कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा इखलास मोहब्बत की कमी है। जिस शख्स में मोहब्बत करने की सलाहियत ही पैदा नहीं होगी वो अपने प्राइवेट दोजख में हर वक्त जलता रहता है। जो मोहब्बत कर सकता है वो जन्नत के मजे लूटता है, लेकिन मोहब्बत का दरवाज़ा उन लोगों पर खुलता है जो अपनी अना और अपने नफ्स से मुंह मोड़ लेते हैं। अपनी अना को किसी के सामने पामाल कर देना मजाजी इश्क है। अपनी अना को बहुत सुन के आगे पामाल कर देना इश्क हकीकी है।

0: लुबना आपके नाम, आपकी तरफ से मैसेज आया है, जुमा मुबारक टू ऑल लवली लिसनर्स, आई एम लेट ड्यू टू एन अपॉइंटमेंट बट योर प्रेजेंटेशन इज एज लवली एज ऑलवेज माशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपको पसंद आ रहा है प्रोग्राम और आप सुन रही हैं, तहे दिल से ममनून हूँ। ये सारे कलाम आपके नाम भी और वलायत चौधरी भाई आपके नाम भी, आपकी तरफ से मैसेज है, जुमा मुबारक, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाए और सबको अपने सामान में रखें, आमीन सुमा आमीन। तो बढ़ते हैं अगले कलाम की तरफ, लेकिन उससे पहले ये जरूरी पैगाम।
1: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 8 पीएम ऑन कलर्स टीवी।
2: खतरों के खिलाड़ी।
3: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
4: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
3: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
4: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
3: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
4: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50% अमेनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
3: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड Villas greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉर उनका फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साहो ट्रेवल, auto protected.
7: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op Live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, Nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code LEICA10. WhatsApp 07482511603. Visit monosmarkets.com/tickets now.
8: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है। अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है। बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल है। NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें।
9: फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
10: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
9: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
11: लाइका रेडियो From Stockport to Oldham, this is Leica Radio, Greater Manchester.

तेरा न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है दम पे, मर के दिखा।

चांद जी तू हो फिर भी सितारे, फिर हमारे मारे तेरे पीछे हो तू ना राज, बादल लाओ जमीन पे ताकि आंसू नए तेरे मुझे दिखे। लिखने चलूं दिले हाल दर्द दवा, पर ये कलम तेरे जिक्र पर ही टिके, जितनी दफा ढूंढा सुख खुशी तलब।

0: ते गोल गप्पियां दा पानी।
1: All Monster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
3: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जैमिन फूड्स का वाइब चेक।
4: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जैमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
3: जैमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: डाउनलोड द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप, लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज।
5: हाय, मैं हूं रुबीना खान। सुनिए मुझे लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में दोपहर 1 से 4 बजे तक द मैगजीन शो में।

0: में जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। जैसे ही हमने अनाउंस किया कि अब ये पूरा ट्रिब्यूट होने वाला है 3 आवर्स का मोहम्मद रफी जी के लिए, तो कितने खुश हुए आप और मेरे साइलेंट लिसनर्स, आहा मुस्कुरा रहे हो, बिल्कुल हाय हेलो कर दो। सो आप सब सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। फैंटास्टिक फ्राइडे मनाएंगे आप और हम आज पूरे 3 घंटे। ट्रीट है भाई, ट्रीट है, जैसे कि आपको सैंडी ने कहा कि मजा आने वाला है शो में, है ना, क्योंकि एवरी फैंटास्टिक फ्राइडे हम मनाते हैं मस्ती भरे गीतों के साथ में, वो आज होने वाला है। लेकिन सिर्फ चेंज इतना है कि ओए होए होए होए होए आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह जो हैं मोहम्मद रफी जी, उनकी आवाज में आज मोस्ट ऑफ द गीत होंगे। भाई पूछे आप सबसे कैसे हैं आप सब, फ्राइडे तक आ गए, कंग्रेचुलेशंस, पूरा सप्ताह निकल गया, बस अब कल और परसों जिंदगी जिएंगे, 5 हफ्ते जिंदगी बिल्डअप की। इफ यू रिमेम्बर मैंने आपसे मंडे ये सवाल पूछा था कि आप जिंदगी सही मायने में कब जीते हैं, वीकडेज में या वीकेंड्स, तो वीकडेज में बिल्डअप कर ली लाइफ, वीकेंड रिलैक्स और उसे एंजॉय करने के लिए हो जाइए तैयार। हमेशा की तरह एक लाइफ थियरी लेके आई हूँ और सवाल कुछ होगा मेरे पास में आज, हाँ बस ये बता दीजिए, जब आपने ये सुना कि आज पूरा ट्रिब्यूट होगा, कैसा लगा भाई आपको?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127 इंडियन रुपी एंड 65 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI यूनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

तुम हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

0: क्या बात है, बड़े बड़े फैंटास्टिक ट्रैक्स आप सभी को सुनाए। पहला था दर्द दिल फ्रॉम कर्ज, दूसरा जमाने को दिखाना है, अभी शागिर्द से सुनाया आपको मोहम्मद रफी NIS जौहर की आवाज में। इसमें जब वो ना जब वो ऐसे हकलाते आई जस्ट एंजॉय दैट स्टफ। यहाँ पे और वॉल्यूम मैंने बढ़ा लिया। आई जस्ट लव दिस ट्रैक, शागिर्द का ये जो गाना है ना, इसमें बड़ा मजा आता है। और जिन्होंने ये गीत देखा हुआ है उनकी आंखों के सामने तो पूरा वो एक है ना ऐसे, इट जस्ट फ्लैशेस इन फ्रंट ऑफ योर आईज। फैंटास्टिक ट्रैक्स लाइंड अप है आज आप सभी के लिए। बस कुछ ही देर में आप सबको मैं सुनाने वाली हूँ हमारी आज की लाइफ थियरी। आप अपना साथ देते रहिए और आप सभी जो है इतने मुस्कुराते हुए जो सारे के सारे इमोजीज मुझे भेज रहे हैं, क्योंकि मैंने सवाल आज ये पूछा है कि आज कैसा लग रहा है, पूरा 3 hours का मोहम्मद रफी जी को ट्रिब्यूट देंगे।
1: दिस इज अश्विनी ऑन लाइका रेडियो। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय धुरंधर।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।
1: मेगा ब्लॉकबस्टर धुरंधर ऑन उत्सव गोल्ड 15th एंड 16th ऑफ अगस्त एट 9 PM।
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
5: यू मीन सॉफ्टहॉल ट्रेवल?
4: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
5: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टहॉल ट्रेवल।
4: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
5: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
6: कॉल सॉफ्टहॉल ट्रेवल 24 hours a day 7 days a week on 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
7: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism, and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester, and Leeds. Contact Global Banking School on 0208092940 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.
8: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
9: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
1: A new Asian sound for the northwest of England.
10: Like a radio.
1: This is Leica Radio, Greater Manchester. Send us your feedback on our programs and presenters by simply emailing info@leicaradio.com. That's info@leicaradio.com. We would love to hear from you to make Leica Radio, Greater Manchester a better station for you. Leica Radio, Greater Manchester is the new name for Asian Sound Radio, giving the northwest of England a refreshing Asian sound. Don't forget, info@leicaradio.com.
11: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think, don't let your speed creep.
12: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
1: Get in touch. Advertise on Leica Radio, Greater Manchester, the largest Asian commercial radio station in the northwest of England. Call now 0161 250 8222 or sales@lycaradio.com. Lyca Cool, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Lyca Cool aur online suno lycagold.com pe.
13: This is Lyca Radio.
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Lyca Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
13: This is Lyca Radio.
1: Greater Manchester.
13: Lyca Radio.

0: Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: Laika Radio.
3: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में लैला मजनू फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। चलिए लाइफ थ्योरी के बारे में जरा बात हो जाए। तो रोज इस समय आप सभी को मैं कोई ना कोई लाइफ थ्योरी जरूर सुनाती हूँ। आज की लाइफ थ्योरी का नाम है द डायरेक्शन थ्योरी। तो केनिया के जो एथलीट्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम विलेजेस, और जब भी वो कोई भी रनिंग रेस जीतते हैं उसके बाद जब अपने गांव पहुंचते हैं, अपने विलेज पहुंचते हैं, तो जो भी मेडल उनको मिलता है वो अपने गले में लटका कर और जो उस विलेज की गलियां हैं, स्ट्रीट्स है, वहां से अपनी दौड़ लगाना शुरू करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। अब उन्हें देखकर उस गांव के जो छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, जो जवान बच्चे हैं, वो उनके साथ में दौड़ना शुरू करते हैं। सोचिए उस एथलीट को जिसको आपने टेलीविजन पे देखा, और वही एथलीट आपके अपने गांव शहर से, आपके अपनी गलियों से अगर दौड़ने लगे तो बच्चों के लिए कितनी खुशी का ये एहसास होगा। बच्चे उनके साथ दौड़ते हैं और बच्चों को देख के वो भी उत्साह में आते हैं और वो भी दौड़ते हैं। उन्हें देख के बच्चे बड़ी ही स्पीड में बहुत फास्ट दौड़ने लगते हैं। अब बच्चों को देख के वो भी स्पीड में दौड़ने लगते हैं। अब कुल मिला के ये फास्ट दौड़ने वाली ये जो रेस होती है ये शुरू हो जाती है। दोनों ही वो एथलीट साथ में वो जो बच्चे हैं वो एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखते रहते हैं और एक दूसरे को बूस्ट अप करते हुए अपनी जो प्रैक्टिस है वो करते रहते हैं। अब इसका हमारी लाइफ थ्योरी से क्या लेना देना? हम जहाँ जिस सोसाइटी में, कम्युनिटी में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, वहां पे कोई ना कोई ऐसा एक इंसान होता है जो अचीवमेंट करता है और जो सोसाइटी में कोई ना कोई चेंज लाना चाहता है। तो जब हम उसे कोई ना कोई डायरेक्शन में जाते हुए देखते हैं जो शायद हमें भी कभी करना था, तो हम भी उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और साथ में जब ये पूरा का पूरा झुंड आ जाता है साथ में, वो सारे लाइक माइंडेड लोग जो सोसाइटी के लिए, जो दुनिया के लिए, जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जब ये पूरा जत्था साथ में आ जाता है तो जिस डायरेक्शन में, जिस चीज के लिए वो काम शुरू किया था उस मुकाम तक वो पहुंचते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि आपके अपने परिवार, सोसाइटी में ऐसे कुछ लोग होंगे जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्हें देख के इंस्पायर हुई, मोटिवेट हुई, शायद आप वो हो कि जिसे देख के लोग मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो जरूर अपने आसपास के लोगों को, सोसाइटी को, अपने गांव, शहर, देश को मोटिवेट करते चले, अपने आसपास के लोगों को प्राउड फील कराते चले एंड सबको डायरेक्शन देते चले, क्योंकि ऐसे लोगों की हमारी दुनिया में बहुत जरूरत है। आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन देने वाला है या नहीं, सोचिए, याद कीजिए, मुझे मत बताइए। उन्हें फॉलो करना है या नहीं, डिसीजन है आपका, क्योंकि लाइफ है आपकी। कैसे लगी है थ्योरी जरूर बताइएगा।
2: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
4: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Laika Gold in London, the Midlands and Manchester.

तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

0: Greater Manchester to Greater London. We are Lyca Radio. Competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127 इंडियन रुपी एंड 65 पैसे. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. 8:15. इस आवर का आगाज किया था हमने वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स तू इस तरह, दैट वाज फ्रॉम आप तो ऐसे ना थे. एंड सेकंड हमने लिया था शान फिल्म से, बड़ा मस्ती भरा गाना था ये भी. नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुना रहे हैं द ट्रेन से सुनाएंगे. आज आप लोग, कई लोग अपनी अपनी फरमाइश वाली लिस्ट भी भेज रहे हैं, लेकिन एज यू ऑल नो दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट शो और यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड हो जाती है. तो आई हैव टू अपोलोजाइज कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि काफी वेराइटी और वेरिएशन आपके लिए यहाँ पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं. कुछ ही देर में बात करते हैं कुछ ऐसे गीतों के बारे में जो हमारे मन को बड़े लुभावते हैं. आप लोगों से इंटरेक्शन बैक टू बैक शुरू है और आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं. कितना आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ये आपसे बता रहे हैं. अच्छा, होता यह है कि आप लोगों से इंटरेक्शन जब होती है कई बार थोड़ी ना एक रिस्पेक्ट का दायरा कई लोगों से छूट जाता है. एंड हमें ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि द रिस्पेक्ट, यू नो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो दायरा कभी छूटे ना जब हम किसी से बात कर रहे हैं. मस्ती मजाक अपनी तरफ, रिस्पेक्ट अपनी तरफ होता है. सो आई एम श्योर कि आप सभी लिसनर्स जो हैं आप इतने अच्छी तरह से, इतने रिस्पेक्टफुली मैसेज भेजते हैं. कभी कुछ हो जाता है कि सर्टन पीपल मस्ती मजाक में थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन क्रॉस कर जाते हैं. एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि यू नो एक अच्छी इंटरेक्शन हो, एक फ्रूटफुल इंटरेक्शन हो और कहीं हम लाइन क्रॉस ना करें. दैट इज सो सो क्रूशियल. नेक्स्ट ट्रैक मोहम्मद रफी की आवाज में आप सभी के लिए द ट्रेन से.

0: चचाई चचाई चाई चाई झाक दिनक दिन थाक तिनक तिन धाक दिनक दिन थाक तिनक तिन धाक।
1: आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: Emotion of the day. Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 8:29. इट्स 8:29. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. 31st of July फ्राइडे, तो कल वीकेंड भी है, नया महीना भी है, अगस्त भी शुरू हो रहा है. तो जब भी कोई न्यू मंथ आता है तो फॉर मी आई डोंट नो, आई फील वेरी हैप्पी. यू नो, जब भी किसी भी चीज की नई शुरुआत होती, नया सप्ताह भी होता है. आई नो लोग बोलेंगे मंडे पे तुम कैसे खुश हो सकती हो, क्योंकि नया दिन एक तो होता है, नया वीक होता है, वो कितनी सारी चीजें हमारे लेके आता है. एंड स्पेशली फॉर मी, बिकॉज आई एम पैशनेटली यू नो लविंग माई जॉब, आई एम पैशनेट अबाउट माई जॉब एंड आई एम लविंग माई जॉब. तो दो शब्द मिला के मैंने अभी पैशनेटली लविंग माई जॉब बोल दिया. इट्स ओके, डोंट गो इन टू द ग्रामर, एट टाइम्स इट्स ओके. सो वेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, तो उसे आप तहे दिल से एंजॉय करते हैं. एक तो ना, दुनिया में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि उनका पैशन क्या है. प्लीज ढूंढना शुरू कीजिए. हमारा जो इंटरक्टिव सेशन होता है ना एट द बिगिनिंग ऑफ द शो, और मैं आपको रोज एक सवाल पूछती हूँ कि आपके हिसाब से पैशन क्या होता है. आज मैंने आपको सवाल नहीं पूछा था, चलो अब पूछती हूँ, आपके हिसाब से पैशन क्या है. मेरे हिसाब से पैशन वो चीज है जब उस चीज को करते हुए मैं घड़ी की तरफ नहीं देखती. आप कहो कि अश्विनी तुम तो बार बार हमको यहाँ पे टाइम याद दिलाती हूँ. अरे बाबा, शो चल रहा है ना, इसलिए टाइम याद दिलाना पड़ता है. बट देर आर सो मेनी थिंग्स, लाइक ड्राइविंग फॉर मी इज अनदर पैशन. आई लव टू ड्राइव, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्राइविंग करना. तो ऐसे जो पैशन होता है ना, बहुत सारे लोगों को अपना पैशन पता नहीं, ढूंढना शुरू कीजिए. उसमें से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपना पैशन फॉलो करने मिलता है. तीसरा, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनको अपने पैशन पता है, वो फॉलो करने मिलता है, एंड उसमें से वो कमाते भी हैं. तो इसे कहा जाता है इकीगाय, जापानीज टर्म है, जरूर चेक करिएगा इकीगाय. क्या आपको अपना इकीगाय मिल गया, मुझे जरूर बताइएगा. अच्छा, बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो अगर चेंजेस आ जाए तो हमारे लिए कितने हेल्पफुल होंगे. ये कौन सी चेंजेस के बारे में मैं बात कर रही हूँ बताऊंगी कुछ ही देर में. लेकिन उसके पहले बैराग फिल्म से वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स अगेन, मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर की आवाज में सारे शहर में.
0: दिस इज लाइका रेडियो, मेकिंग समर फील बेटर ऑन द लाइका रेडियो नेटवर्क.

0: है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

0: ये है लाइका रेडियो।
1: Hey, this is Rizkhan and I'm taking you home on drive. Weekdays 4 till 7 p.m. at Leica Radio Greater Manchester.
0: Leica Extra podcast update.
2: भाई एपिसोड नंबर 27 आ चुका है तो जरूर इसे देखिए सुनिए। दीप राजा एंड खुश ने इसे होस्ट किया है। द इंटेंस एपिसोड अनकवर्स द हार्श रियलिटी ऑफ ऑनर बेस्ड अब्यूज इन आर देसी कम्युनिटीज। ऑनर बेस्ड अब्यूज, वेल दिस इज क्वाइट एन इंटेंस टॉपिक और जरूर देखिएगा क्योंकि काफी चीजें यहाँ पे बात हुई है, काफी मुद्दों पर बात हुई है। वेन लोग क्या सोचेंगे बिकम्स लाउडर देन सेफ्टी एंड इट्स नॉट जस्ट वुमेन, दिस ऑल्सो अफेक्ट्स मेन हु सफर इन silence and are often overlooked in the conversations. So Leica Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms. Leica Extra.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम क्या हुआ है. इट्स नियरली 38 मिनट्स पास्ट 8. तो वीकेंड है, वीकेंड के प्लान बन चुके हैं आप सबके, कहाँ जहाँ जाना है, क्या शॉपिंग करना है, क्या खाना बनाना है. भाई आप लोग कितनी वैरायटी ऑफ डिशेस बना रहे हो और वो सब के सब आप मुझे भेजे जा रहे हो पिक्चर्स. क्या सोचे थे, अश्विनी खुश हो जाएगी, शाबाशी देगी. अरे यार यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं. कोई भिंडी की सब्जी भेज रहा है, कोई वड़ा पाव भेज रहा है, कोई पता नहीं नेपाली थाली भेज रहे हैं. क्या मतलब काहे ऐसा कर रहे हैं आप लोग, क्या मजा आ रहा है आपको ऐसे करने में. थैंक यू सो मच, मस्ती मजाक एक तरफ, थैंक यू सो मच. आप लोग आपकी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा हम सबको बनाते हैं. देखो ना, हम लोग आपके घर के मेंबर तो बन ही चुके हैं ना, रेडियो द्वारा आपके घर में आते हैं. आप लोग भी आपने अपने पैशन के बारे में बताते हैं, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में बताते हैं. बहुत अच्छा लगता है ये इंटरेक्शन आप लोगों के साथ में. एंड म्यूजिक एक ऐसा माध्यम है जिससे आप और हम साथ में जुड़े हैं. तो भाई मैं कल से कह रही हूँ कि ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं जो अगर उस पे थोड़ा सा काम किया जाए ना, तो हमारी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी. अब ट्रैफिक लाइट्स पे जब हम शुरू होते हैं, मतलब रुक जाते हैं, तो वहां पे अब लोगों की गाड़ियों के स्पीड बढ़ने लगते हैं, हॉकिंग कभी कभी शुरू हो जाती है क्योंकि लोग मूव नहीं हो रहे हैं. सो इन अ वे अगर ट्रैफिक लाइट पे ये दिखा दिया जाए कि कितने सेकेंड में बस ग्रीन लाइट होने वाला है, तो शायद वो जो एक हॉकिंग और वो जो इम्पेशेंट होने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए शायद अच्छा हो जाए. पब्लिक बेंचेस पे देयर शुड बी बैग हुक्स ताकि लोग बैग्स साइड में हैंग करके दे कैन गिव प्लेस टू सिट अदर पीपल एज वेल, है ना. हॉस्पिटल्स शुड डिस्प्ले वेट टाइम्स सो पेशेंट्स फील लेस एंग्शियस कि भाई अनापना ए पर्सन को अभी 20 मिनट्स, बी पर्सन को 30 मिनट्स ऐसे आ जाए ना, तो इंसान थोड़ा वहीं पे आराम से बैठता है, अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता. ट्रेन स्टेशंस शुड हेल्प पैसेंजर्स बोर्ड द लीस्ट क्राउडेड कैरेजेस. तो कैरेजेस में पिक्चर्स जो चलती रहती हैं स्क्रीन पे, उस पे अगर आ जाए कि ये अला फला कैरेज जो है इसमें लोग कम है, तो मे बी बाकी जो पैसेंजर्स खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे दे कैन एक्चुअली यू नो दे कैन समझो फाय कि हम कौन से कैरेज में जा सकते हैं. Every dish should display its spice level on the menu. I think with pizzas ये हो जाता है ना, but हमारे जो देसी dishes होती हैं curries, वहाँ पे भी शायद कितना मतलब mild है या फिर spicy dish है बताना चाहिए. Next track आप सभी के लिए सुहागपुर से.
1: This is Ashwini on Leica Radio.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02 08 5748 4410. दैट्स 8 5 7 4 8 4 1 0. साफो ट्रेवल. At all protected.
5: Hey, friends के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
6: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
5: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Did you know you can get all the biggest showbiz news stories daily by logging on to LeicaRadio.com or the Leica Radio mobile app powered by BizAsiaLive.com.
7: This is Leica Radio.
8: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors. Check before you maneuver, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, It's on all of us. National Highways.
9: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
1: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: Striker Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं, कभी कभी हमारे एक कंप्यूटर साहब भी जो है, एक पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं 128 इंडियन रुपीज एंड 66 पैसे, 374.65 पाकिस्तानी रुपी, 452.85 श्रीलंकन रुपी, 166.6 बांग्लादेशी टाका, 88.35 अफगान अफगानी, 174.39 केनियन शिलिंग, 1.34 यूएस डॉलर्स, 63.36 मॉरिशियन रुपी.
0: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
0: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: Gold is currently trading at £96.75 per gram.
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
1: सुहाग फिल्म से सुनाया था, मोहम्मद रफी, शैलेंद्र सिंह, आशा भोसले की आवाज में, तेरे रब ने बना दी जोड़ी. एंड आज मैं तो खुश हुई, लेकिन आप सब भी कितने खुश हैं. एवरीबॉडी इज लाइक, कोई बता रहा है कि कैसे वो शॉपिंग के लिए निकले थे एंड वो हमें सुन रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम पार्क में टहल रहे हैं, किसी ने कहा मैं अपने पेट डॉग के साथ में घूम रहा हूं और उसके साथ में ये गीत सुन रहा हूं, किसी ने कहा कि भाई मैंने वॉल्यूम इतना बड़ा रखा है रेडियो का कि मेरे प्लांट्स जो है गार्डन में वो भी आपका गीत संगीत सुनते हैं. हेलो प्लांट्स, कैसे हैं आप सब? ओके, अच्छा ये सच में बताना, डू यू टॉक टू द नॉन लिविंग थिंग्स इन द हाउस? बिकॉज आई डू दिस रेगुलरली. मतलब व्हेन आई सिट इन माय कार यहाँ पे आने के लिए, सो आई से हेलो एंड आई से थैंक यू टू माय कार जब मैं पहुंच जाती हूँ यहाँ से. एंड आई व्हेन आई स्टार्ट माय कार आई विल ऑलवेज से गणपति बप्पा मोरिया. सो माय फ्रेंड इज लाइक कि तू सारा बोझ भगवान पे डाल देती. मैंने कहा हाँ उनकी जिम्मेदारी है भाई. When I leave my workplace, I say thank you. जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है ना, देखिए आपकी ना एक बहुत अच्छी एनर्जी होती है आपके पास में, तो उस अच्छी एनर्जी को अच्छी जगह यूज करिए. बी ग्रेटफुल, बी इन ग्रेटिट्यूड. आप सभी एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं आपको और क्या ही ज्यादा सिखा तो नहीं रही हूँ, बस याद दिला रही हूँ. चलते हैं लास्ट ट्रैक की तरफ.
0: Leica Radio Network. This is Ashwini on Leica Radio.
3: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi, every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV.
4: Khatron Ke Khiladi.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-

0: 8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
1: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है। अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है। बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल है। NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें।
2: Caratino Bitter Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free, butter ghee alternative. Caratino Bitter Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Bitter Ghee.
3: New hits on Leica Radio.

0: listen to the freshest hits added daily on Lyca Radio. Download the Lyca Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0161-250-8222 या ईमेल करें sales@lykamedia.co.uk.
2: The Evening Show with Ashwini.
3: Lyca Radio,
0: where Bollywood comes first.

0: वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर एंड द आखिरी आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. इस आवर का आगाज हमने किया था नसीब फिल्म से, जॉन जॉनी जनार्दन, एंड नेक्स्ट वॉज पसंद आ गई है वो काफी हसीना. सो ऑल हसीनाओं, आप लोगों के लिए डेडिकेटेड ये गीत आप सबके लिए है ना. देखो जब भी कोई अच्छे गीत आते हैं ना, प्यारे गीत आते हैं और हमें लगता है हमारे लिए, तो अपने आप के लिए खुद को डेडिकेट कर लिया करो. क्यों अपना है किसी और के लिए कि somebody else will tell you कि ये ना आपके लिए है. नो आई एम हैप्पी विद समथिंग, ये मेरे लिए है. सो 31st ऑफ जुलाई, लास्ट डे ऑफ जुलाई एंड 2026 का जुलाई टाटा बाय करके हमें निकल जाएगा. सो किसी का बर्थडे होगा, किसी की एनिवर्सरी होगी, एंड आज का दिन किसी के लिए स्पेशल होगा, किसी के लिए नॉर्मल होगा. लेकिन और भी बहुत सारी चीजें आज मनाई जाती हैं. तो आज मनाया जाता है नेशनल एवोकाडो डे, साथ में नेशनल मट डे, वर्ल्ड रेंजर डे, नेशनल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अप्रिसिएशन डे, ओके, देन लाइफ गार्ड अप्रिसिएशन डे, फिर नेशनल जंप फॉर जेली बीन्स डे. यानी इनके नाम भी बड़े गजब गजब लग रहे हैं मुझे, है ना. एंड नेशनल रास्पबेरी केक डे. नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. एक तो पहला है एवोकाडो. नाउ वी एशियंस ना, हमने एवोकाडो के साथ में अपने जो एक्सपेरिमेंट किए, तो हमारे यहाँ पे हम जो एक चटनी बनाते हैं एवोकाडो की, यू डेफिनेटली नीड टू लिसन टू दिस. एवोकाडो, उसके साथ में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा लहसुन एंड थोड़ी सी ग्रीन चिली, चाहिए तो कोरिएंडर ऐड कर लो. इन सबको घुमा लो मिक्सी में, ओके. उस पर डाल दो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, नींबू, नमक, चटनी रेडी. और ब्रेड को टोस्ट कर लो और उस पर लगा के खा लो कल सुबह. मुझे याद करना, मंडे जब मैं आऊंगी तब बताना कि एवोकाडो की चटनी कैसे लगी. रिपीट कर देंगे फिर से, एवोकाडो उसमें थोड़ा सा जीरा, ग्रीन चिली, लहसुन, कोरिएंडर, मिक्सी में से घुमाओ, उसमें आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दो और थोड़ा सा नींबू का रस. नमक तो बदता है ना, नमक तो जाना चाहिए, ठीक है. देखो अभी मैंने कैसे बदला लिया आप सबसे, देखो हो गया ना सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव. क्योंकि बेसिकली एवोकाडो को ना खुद की टेस्ट नहीं होती है, तो जब आप लहसुन डालते हैं, उसमें गार्लिक डालते हैं, ग्रीन चिली डालते हैं, तो उसकी टेस्ट आ जाती है. अनदर थिंग, सो आज मनाया जाता है रास्पबेरी केक, रास्पबेरी केक डे. फॉर मी माई पर्सनल फेवरेट वुड बी ब्लैक फॉरेस्ट केक, उसके बाद में वॉलनट एंड कॉफी केक, एंड रसमलाई केक. व्हेन आई वेंट टू माई सिस्टर्स प्लेस इन डिसम्बर न्यू जर्सी में, मैंने वो रसमलाई केक खाया, तो आई वॉज लाइक वाओ दिस इज समथिंग यूनिक. आपने कुछ ऐसे अलग फ्लेवर के केक खाए हैं मुझे जरूर बताना, एंड एवोकाडो की चटनी उसके बारे में भी बताना.
1: Brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For one British pound, you would get 127 Indian rupee and 65 paise. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: तेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी।
2: पंजाबी।
3: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London and Leica Gold Greater London. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0161 255

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: 1 pound ke badle aapko milega 128.67 Indian rupee, 374.78 Pakistani rupee, 453.04 Sri Lankan rupee, 166.59 Bangladeshi taka, 88.34 Afghani, 174.48 Kenyan shilling, 1.34 US dollars, 63.37 Mauritian rupee.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
0: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: Gold is currently trading at £96.67 per gram.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
1: चलिए भाई एक बार आखिरी बार जरा मिला लेते हैं घड़ियां 9:40 इट्स 9:40 आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर गोल्ड नाइट्स हमारी ओवरनाइट सर्विस है जरूर सुनिएगा लाइका रेडियो 90s वाले बच्चों खुश हो जाओ लाइका रेडियो पंजाबी लाइका गोल्ड 2 तो बहुत सारे रेडियो हम आप सबके लिए लेके आए क्योंकि हमें रेडियो वाले है ना वीकेंड आ चुका है आई एम श्योर वीकेंड के आप सभी के कुछ न कुछ प्लान्स होंगे ऑब्वियसली मेरे भी कुछ प्लान्स हैं एंड हमने जो ये 5 दिन इतनी अच्छी खासी मेहनत करी है तो वीकेंड पे थोड़ा अपने आप को पैम्पर कीजिए जैसे कि अभी जो हमने आपको गीत सुनाया था उसमें जिस तरीके से लता मंगेशकर की आवाज में जो एक्ट्रेस है उन्होंने कहा होगा छेड़ती है ये हवा तो ही इज आस्किंग तो क्या हुआ ऐसे हुआ वैसे हुआ कम ऑन इट्स ओके जस्ट पैम्पर योरसेल्फ यू नो दैट्स व्हाट यू ऑल डिजर्व एंड यस जब बाहर जा रहे हैं तो अपनी केयर लीजिए अब ऐसा इतना मुझे बोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर्स अब चेंज हो रहे हैं ना अब जरा 20s में आ गए तो 30s वाले जब टेम्परेचर आते हैं तो हम सबकी हवाइयाँ कितनी उड़ जाती है ना हम वी आर डेस्परेटली वेटिंग कि यार सितंबर वापस आ जाए बहुत हो गया देयर आर सो मेनी पीपल व्हेन वी टॉक एंड दे आर लाइक ओ माय गॉड अभी ना ये गर्मी ना हाय गर्मी ओफ गर्मी बहुत हो गई सो अब अभी ऑगस्ट है यानी कि बच्चों के रिजल्ट्स आने होंगे उसके बाद स्कूल की एडमिशन्स उसके बाद में कॉलेज की एडमिशन एंड सितंबर में फिर से हम सब की रूटीन कहीं घूमने गए हैं कहीं घूमने जा रहे हैं अगर यूरोप में घूम रहे तो बहुत ज़्यादा धूप है प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड घर में ही है तो एन्जॉय करते रहिए मंडे से फ्राइडे द इवनिंग शो विद अश्विनी 3 घंटे एंड अमेजिंग फीचर्स पहले आवर आपको सुनाते हैं हम यादों की बारात इमोशन ऑफ द डे सेकेंड आवर में गजलिया कवाली लेकिन आज हमने कुछ भी नहीं सुनाने वाली ऐसा हो गया नहीं गजल कवाली नहीं सुनाएंगे अगले 2 ट्रैक्स आप सबके लिए लेके आई हूँ मैं अंदाज फिल्म से एक गीत है एंड उसके बाद में आखिरी गीत होगा आओ प्यार करें ऑब्वियसली मोहम्मद रफी जी के लिए हमने ट्रिब्यूट किया ये पूरे 3 घंटे दिस इज द लास्ट शो ऑफ 31 जुलाई वीकेंड का कल सुबह हमारा वीकेंड क्रू आएगा तो बिल्कुल तैयार रहिएगा अपने मनोरंजन के लिए दीप राजे अपने फैंटास्टिक मजाकिया स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं तो उनको सुनिएगा और बाकी हमारे प्रेजेंटर्स वो खूब तैयारी करके आएंगे आपके मनोरंजन के लिए हमेशा की तरह प्यार लो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ बड़ी सुंदर है एंड पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए आई एम श्योर आप सब वो नहीं करते गुड बाय लव यू ऑल टेक केयर
0: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स
3: दिस सुपर हिट सॉन्ग इज proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: is Ash Winnie on Leica Radio. Leica Radio. This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV.
1: Khatron Ke Khiladi.
2: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
3: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
4: You mean Saathol Travel?
3: Yes, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
4: एक बार आजमाइए जरूर Saathol Travel.
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
0: Call Saathol Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250. That's 0161 250 1250.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
6: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
7: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
9: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
8: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
9: दिल तो टूट पे किया,
8: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
10: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
8: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
0: We are Leica Radio.
11: Leica Radio.
0: Listen to us in Greater Manchester and Greater London. Don't forget, in London, we're available on 1458 AM and DAB. Next. The biggest romantic songs are up next on Love Sound.
11: Leica.
12: मैं हूँ इब्न ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में Leica Radio ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक.
11: Leica Radio,
0: where Bollywood comes first.

0: Mica Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, auto protected.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
0: Advertise your brand on Leica Radio, Greater Manchester, and reach out to hundreds of thousands of listeners across the northwest of England. Call 0161 250 8222. That's 0161 250 8222.
4: Two devastating earthquakes have hit Venezuela, and survivors urgently need support. Please help now. Go to dec.org.uk to donate. Thank you. The big